0: जो ग्रुप है पिछली स्टेज वास्ते असीं तैयार हो चुके हाँ। तो मैं बेनती करांगा कि जिहड़े बच्चों ने पिछली बैक स्टेज उत्ते जाके परफॉर्मेंस करना है उत्थे जज साहिबान और गुरु महाराज का प्रकाश हो चुका है, तो आप मैं बेनती करांगा अपने अटेंडेंस लगाने वाली बच्चियों नूं कि जिहड़े बच्चे पिछे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हां दा उन्हां नूं आप दस दिओ, पूरी लिस्ट दे दिओ तां जो बच्चे पिछे जा करके अपनी परफॉर्मेंस वगैरह वो कर सकन। हुण आप जी नूं बच्ची पाहुलदीप कौर शब्द राही निहाल करेगी, आओ प्यार नाल सरवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
1: वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम पाहुलदीप कौर है और मैं 11 साल दी हाँ। मैं ये शब्द सेवक को निकटी हुए दिखावे की गायन कर लगी हाँ। ये शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी ने दोबारा राग आसा विच उच्चारण किया सी। ये शब्द अंग 403 ते सबाईमान है। ये शब्द सानू दसता है कि परमात्मा अपने सेवक नू विखांदा है कि मैं तेरे अंग संग रहिंदा हाँ, जो कुछ सेवक मंगता है वह मंग पूरी हो जाती है। जिहड़ा सेवक अपने गुरु नू प्यारा लगता है मैं उस तो कुरबान हो जाता हाँ। हुण मैं ये शब्द ही गायन करन लगी हाँ। प्यार नार सरवण करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

0: खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ए सी सानवी चावला, हुण जसकीरत सिंह प्लीज स्टेज ते आ जाण अते हेज़लप्रीत कौर स्टेज दे नाल रेडी रहन। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
2: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम जसकीरत सिंह है अते मेरी उम्र 11 सालां दी है। आज मैं श्री गुरु अर्जन देव जी दे द्वारा राग आसा विच उच्चारण कीता शब्द दर्शन मांगो दे प्यारे तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे रहाओ कौन जा रहा हाँ। ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 386 उपर दर्ज है। इस विच गुरु साहिब जी सच्चे प्रेम की अवस्था बयान करते हैं जिथे भगत अपने प्रीतम वाहगुरु के दर्शनों लई तरफदा है। गुरु साहिब जी सानू सिखाते हैं कि सच्चे वाहगुरु जी के दर्शन की प्यास ही सच्ची भगती का मूल है। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह।

0: vai, Gru. Oh. Eh, San Manjap Kaur.
1: Eh, San Manjap Kaur, hun Warren Sharma stage se aa jaye te Therjot Kaur backstage ready rahen.
2: गुरु प्यारे साथ संगत जी बोलो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम वॉरेन शर्मा है। आज मैं तुहाडे सामने श्री गुरु अर्जन देव जी का शब्द अपने दास को कंठ लगावे राग पैरो तीन ताल विच सुना जा रहा हाँ। यह शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच 1138 अंग ते विराजमान है। यह राग दा गाउण दा समा दिन दा पहला पहर है। यह राग ਦਾ ਇਹ ਰਾਗ ਦਾ ਵਾਦੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦੀ ਰੇ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਨ ਕਰੋ ਜੀ।

गुरु रूप गुरु प्यारी सात संग जियो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम गुर असीस कौर है, मेरी उम्र 10 साल दी है। अज मैं तुहानु सारिया नू गुरप्रसाद दी हरनाम समाल शब्द सुनाण जा रही हाँ, जो कि तीजी पातशाह श्री गुरु अमरदास जी द्वारा राग भैरव विच उचारण किया गया है। अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग नंबर 1129 विच दर्ज है। इस राग विच रे अते दा कॉमन हन, ठाट भैरव है, जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इस शब्द नू गायन दा समा सवेर दा है। वादी दा कॉमन हन, समाधि रे कॉमन हन। इस शब्द विच गुरु साहब सानू ए समझांदे हन भी गुरु दी किरपा नाल परमात्मा दा नाम संभाल, ए हरदा नाम सदा ही तेरा साथ देवेगा। आहो सारे मिलके इस शब्द का आनंद लईए।

गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम अगमजोत कौर है अते मैं 11 साल दी हाँ। मैं आप जी नू श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी दा सारंग राग विच उचारण कीता होया शब्द करत केल बिख्या मेल चंद्र सूर मोहे आप जी नू सारंग राग विच ही सरवण करावांगी। इस शब्द दा भाव अर्थ ए है कि हे भाई, माया अनेका कलोल करती है, जीवा नू विकारा नाल जोड़ती है। चंद्रमा, सूरज आदिक सब देवते भी इस तो बच नहीं सके, इस करके रब दा नाम जप। इस शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दे 1231 अंग ते सबाईमान है। इस शब्द विच दोवे नी थाट काफी वादी सुर रे अते सुनवादी सुर पा है। इस शब्द विच गा अते दा वर्जित सुर हन। इस शब्द दा गौंदा समा दुपहर दा है। मैं आप जी नू इस शब्द 4 तालां विच सरवण करावांगी। पहली ताल एक ताल अस्थाई, पहला अंतरा तमार ताल अते आड़ा चौताल, दूसरा अंतरा दीपचंदी ताल अते एक ताल। प्यार नाल सरवण करो जी।

वाहेगुरु जी का खालसा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज मैं तन तन श्री गुरु अर्जन देव जी दे शब्द ऐसी प्रीत करो मन मेरे, जो कि राग बलावल विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 807 उपर दर्ज है, सरवण करो।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज आज शब्द गुरु अर्जुन देव जी द्वारा राग भैरव विच लिखा गया है। अति श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 1137 विच दर्ज है।

ए सन प्रियनूर कौर हुन अवलीन कौर प्लीज स्टेज ते आ जन अते जपन जोग कौर बैक स्टेज तैयार रह।

0: वाहे गुरु जी की फतेह।
1: सन अवलीन कौर हूँ जपन जो कौर प्लीज स्टेज पर आ जाए। इस तो बाद 10 तो 12 वाला एज कैटेगरी समाप्त हो जाएगा ते सोलो सिंगिंग एंड स्ट्रिंग शुरू हो जाएगा।

ना मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ डिफरेंट. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरा नाम अनहद कौर है और आज मैं आप जी ने गुरु अर्जन देव जी का शब्द साधु हर हरे गुण गाए सरवण करारी हाँ, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 1300 दे विच सुशोभित है. यह शब्द राग कानरा दे विच है जिसका थाट काफ़ी है और इसका वादी सुर पा और संवादी सुर सा है. यह शब्द का गायन करन का समा रात का दूजा पैर है. ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਨ ਮਨ ਧਨ ਔਰ ਹਰ ਸਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਔਰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.

0: सतसंगत मिले सोतरिया, सतसंगत मिले सोतरिया तरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ए सन करणदीप सिंह हुन अनिकप्रीत सिंह प्री स्टेज ते आ जन अते गुरलीन कौर बैक स्टेज ते आ रहन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

गुरु प्यारी साथ संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आप जी नूं श्री गुरु अर्जन देव जी दे जास्त्री राग विच उच्चारण कीता है। शब्द कोई जन हर सिंह देवै जोर, जास्त्री राग विच ही गा के सुना रहा। ऐ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवन अंग नंबर 701 ते दर्ज है। इस विच गुरु साहिब जी कहिंदे ने, जो कोई मैनू वाहगुरु जी नाल जोड़ देवे, मैं उसकी चरण परस के उसकी शोभा करां। इस गायन राग दा गायन समा 3 ता 4 पैर है। प्यार नाल सरवण करियो जी।

0: वाहेगुरु जी की फतेह।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ए सन गुरलीन कौर, हुन गुरलीन कौर प्लीज स्टेज ते आ जन, अते जपलीन कौर बैक स्टेज ते आ रहे हैं।

गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज मैं आप जी नूं श्री गुरु अर्जन देव जी का शब्द सांत पाए गुरु सतगुरु पूरे उचारण सुनान जा रही हाँ। इस शब्द का राग बिलावल है अते मैं तीन ताल विच उचारण करांगी। इस शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच अंग 806 ते विराजमान है। इस राग दी वादी धा है अते संवादी गा है। इस राग दे गाउण दा समा दिन दा पहला पहर है। इस शब्द विच गुरु जी सानू दसते हन कि हे मनुख, जे तू अपने मन विच सुख शांति अते ठंड पालदा है तो तेनू सतगुरु वाहिगुरु जी दे नाम नाल जुड़न दी लोड़ है। प्यार नाल सरवण करो जी।

जैपलिन कौर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज मैं आप सात संगत जी दे सामने भगत नामदेव जी द राग बिलावल गौंड विच रचित शब्द आज नाम मैं बीठल देखिया गायन करूँगी। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 874 अंग ते लिखा है। अज मैं शब्द तीन ताल च पढ़ाँगी। ये शब्द राग बिलावल गौंड च लिखा है। राग बिलावल गौंड दो रागा का मेल है। राग बिलावल गौंड दिन के दूजे पैर इच गाया जाता है। इदा वादी गा ते संवादी दा है। भगत जी कहिंदे ने कि हे पांडे मैं तो परमात्मा नूं अज इत्थे ही वेख लिया है पर तैनू मूर्ख नूं किवें समझावां।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम उपारा सब त्यावै है सब त्यावै दूजी हर सच्चे सृजनहारा सब जीव तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्याव

हे तुझ बिन दूजा कोई ना हे, जीव जंत सब तेरा खेल, वियोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जानाए हे सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेखह जानह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला तित सरवरड़ै।

बियाले मन एक न चेतस मूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हों जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरना

तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुजु करी और अच्छा। राख ले हो मोह राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बन

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहि तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। खिल विख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अस्तुजा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़ेला।

अर्ध सहस फुन तीन कहि जय। भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा तीरस्तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो।

अमृत छाड़ बिखै बिख खाई माया मोह परमं पै पुल्ले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तैह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ की रत की गुरु रामदास रखो हो सरनाई एक अरदास पाठ की रत की

तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में कोई न जाने तुमरा ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो ऐसा

बोलो जी वाहिगुरु। एको ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याय। फिर

है सुख मांगे मुख कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख बिदाते शरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मुख कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

प्रभु को सिमरे से तनवंते प्रभु को सिमरे से जन परवान प्रभु को सिमरे से बहुमोहताजे प्रभु को सिमरे से सुखवासी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला प्रभु को सिमरे से परोपकारी प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे प्रभु को सिमरे तीन आत्म जीता प्रभु को सिमरे तीन अनंत कनेरे शांत गिरवाते अंधिन जाग प्रभु प्रभु के सिमरन कार्य पूरे प्रभु के सिमरन हर गुणवाणी प्रभु के सिमरन ने चलासन प्रभु के सिमरन अनहा चुनकार सिमरे से जन जिन को प्रमया हर सिमरन गत भगत पकटाए हर सिमरन पैसी जदी दाते हर सिमरन तारी सब तरना।

रात सब नहीं कज करे जपाया अंतर व्यापे लोग जवान गल पातर कैसे तरे था नानक दे जन सह समात कर गए ले ओड नभावे निसके ये तो समझे पूरा जतन करे तो भी सुरबंग नहीं हो दुआस गवन नानक तुमरी कृपा धरे

मंत्री स्मृतवालस की जय। मंत्री प्रभु का बुना विजारी राग प्रोय प्रभु अपने मना उठत बैठत दिशे ते आई यहाँ वाना ने तेरी रखे मन आठ बैठ कर जिसका ध्यान इस प्रभु को साथ साथ चितारी सो प्रभु सिमरो सदा अनूप सो प्रभु सिमरो सदा दिन रात गुर प्रसाद नानक जस के जे प्रसाद वे के विस्माद जे प्रसाद सुख से जे बसना जे प्रसाद संपूर्ण बले जे प्रसाद सुख से समावे गुर प्रसाद नानक मन जागो इस प्रभु को मूल न मनो विचार मेरे मन मूर्त दागो जाप तिसे जान मन सदा हजूरे रे मन मेरे तु दासो राज नानक जाप जपे जब सोए आप गुवाए सो हर गुण गाओ

0: शाश्वती।
1: सार के संग मुख उज्जल होत,
0: सार के संग
1: मिटे अभिमान,
0: सार
1: के संग पूजे प्रभ नेरा,
0: सार
1: के संग पाए नाम रतन,
0: सार
1: की महिमा बरने कौन प्राणी,
0: सार
1: के संग गोचर मिले,
0: सार
1: के संग आवे बस पंचा,
0: सार
1: संग होए सब की रेन,
0: सार
1: के संग ना कतू तावे,
0: सार
1: के संग माया ते बिन,
0: सार
1: संग दुश्मन सब मीत, सार संग किस्यो नहीं बैर, सार के संग ना ही को मंदा,
0: सार
1: के संग ना ही हो ताप, आपे जाने साध बढ़ाई,
0: सार
1: के संग ना कबूत आवे, सार संग बस अगोचर ले, सार के संग बसे तान उच्चे, साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग पाए नाम निदान, साध के संग सब कुल उदारे, साधु के संग सोतन पावे, साध संग धर्म राय करे सेवा,
0: साधु
1: के संग बाप लाए,
0: साध
1: के संग सर्व दान गम,
0: साध
1: के संग नहीं कुछ काल, साध के संग कुलुक दरे, साध के संग इया उहां सहला, जो इच्छे सोई बल पावे, बार ब्रह्म साध रीत बसे, साध के संग सुनो अर ना हो, साध के संग ना मन ते बिसरे, साध के संग लगे प्रभ मीठा, साध संग पए आज्ञाकारी, साध के संग मिटे सब रोग, साध की महिमा भेद न जाने, साध की उपमा ते गुंते दूर,
0: साध
1: की शोभा का नाई अंत,

0: ब्रह्म ज्ञानी के कुछ बुरा न पया सदा संतुष्टि ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी
1: ब्रह्म ज्ञानी मंदन दे मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के गरीब स्मार
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी लतावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी के होए सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल भला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सकल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जप

0: ब्रह्म ज्ञानी क्या हो चिंतन,
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत,
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का दस बट पागी पाई है,
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए,
0: ब्रह्म ज्ञानी का खोजे मेसुर,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
0: कीमत नाए
1: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माए,
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद,
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश,
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय दया करो,
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का डाकर,
0: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने,
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने,
0: नानक
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता,
1: ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता,
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जोगत जी का

गुरप्रसाद भिख्या पर हरे इंद्री जित पांच दोग ते रहत वैष्णो सो जिस ऊपर सुप्रसन्न कर्म करत होवे न कर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचे मंथन अंतर सिमरन गोपाल आप दृढ़े अबरा नाम जपावे भगवती भगवंत भगत का रंग मनते विंसे सगला परम।

0: मानो की देख प्रति सब जान
1: देवन को है गर्भवान
0: रहेगा
1: न जिसना लागे आए
0: हरे राखे को आ
1: माने के कुछ नहीं आग
0: इसका
1: नाम रंगांड परोए
0: सिमर सिमर प्रभु सोए
1: नानक बिगन न लागे कोए
0: मन में करने कार
2: कर मन मेरे साथ में व्यवहार
1: सदा सुहेला कर ले जियो
0: ठाकुर का रंग
1: साथ संग बिन से सब संग
0: चलो मारे गोविंद
1: मिले बाप जब ये अरविंद
0: हर हर कर्म सरमन हर कथा
1: हर दर के नानक उज्जवल मथा सदा सदा हर के गुण गाए
0: नाम जो करे विचार
1: से धनवंत गनी संसार
0: बोले हर मुखी
1: सदा

मानक ही तुम प्रीत्याग शरण निरंतरे को जोए गैर कबीर गई सुजाना कृपा निदान दयाल बख्शंद नानक के मन राहु जो कर पाया सोई योग इसका मंत्र न जाने और सर्व दोग दुनियों कर दागे तब मैं तो विश्वर ग्रस्त में भोगी नानक ते पुरका किने अंत न पाया सगल देव हरे बगाए सगल परोई अपने सूत जन दास नाम त्यावे से जन्म मरे फिर आवे जाए जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना पे करे एक रंग प्रभ बनासी एक अंगार पूरे ओ पूरन सब जाए अपनी कीमत आपे भाई जब जब जीवे नानक करना हो नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे सकल आकार नाम के संग उतरे सुन श्रवण नानक चौथे पद में सो जन गत पाए पुरख सत केवल प्रदान सत पुरुख समाय समानी मूल सत सत उत्पत जिसे बुझाए तिसे जपली विश्वास सत नानक गुरते पाई सत्य जन जाके हृदय प्रवेश नाम जपता की गत होए आपे जाने अपनी मित्रत अपना बूझ करत विचार नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया जिन बुझे दिशाया स्वाद गुर के वचन पदार्थ ले जाके संग लरे संसार जन के

0: मुख सो सेवक गुर की मत ले, सो सेवक परमेश्वर की गजन, अनेक बार गुर को बल जाओ, आर पैर पार रंग रंग रहता, एके आप नहीं कुछ बम, नानक ऐसा गुर वट पागी भाई है,
1: परसन चंद निर्मरीद,
0: पार ब्रह्म की दरगह गवे, मन संतो का तुम ध्यान है, अमृत जिस पे के वो संत, नानक जिस पावे किस लय मिलाए, सतपुरख पूर्ण विवेक, अगम गोचर ब्रह्म निर्वाणी, ताकि कीमत के लिए न पाई, चरण कमल हृदय सुमिरे, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, अमृत भी वे अमर सोए, जाके मन प्रगटे गुण दास, सच उपदेश सेवक को दे, मन में राखे हर हर एक, नानक परमो दुख कहते ना से, अनंत ब्याज गुनाटे पाई, साधु के पूर्ण उपदेश से, सगल व्याज मानते कहन से, सास संग जपना मुरारी, सुन्ना ने कर जस्रवन, कलाकार जिन सगली मोई,

अवर पाप सब मीत बिसारो करंकार अंशो प्रभ समरत ये तन संचो भगवंत एक आसरा को मनमाए जिस तन को चार कुंड उठता वे जिसुख को कुछ जिसुको नित बाचो मीत जिसोबा को करी पली करनी अनुकुपावे।

सहस्रं तु मे देव पवित्रो प्रभी निगलीत नानक मांगे नाम प्रभार हर स्वागे बिरला गोए पूरण पुरुष नहीं समान उपजे जाओ जात के संग अंतर प्रज्ञा संति निर्लाग नानक नाम प्रति सुख होए सतगुर दे निर्मल मत लई सेवक कीनो सदा निहाल जन्म मरण दुख भ्रम गया रवरया सत्संग अजूरी नानक भक्ति नाम समाए सोग्यो बिसरे जी किया जाने सोग्यो बिसरे जी जीवन जिया गुरु प्रसाद को बिरला लागे जन्म जन्म का टूटा गाडे प्रभु अपना नानक जंत आया आन त्याग जपो नाम आज जपो नाम जपो बिन भक्ति तनो

0: वहाँ किसे भी आपद माया उसको आपे आदेश है गुण का नाई प्रवेश
1: एक भगवंता
0: कौन जिंदगी से लागे चिंता
1: अपन आप आप त्यारा
0: कौन कते कौन सुनने आ रहा
1: दूजते ऊंचा
0: नानक आपस को आपे पहुंचा
1: आप रजो पर पंच का
0: गुण मैं गिनो विस्तार
1: आपते पई कहावत
0: नर को सुख पंचावत
1: जाल जाल माया जंजाल
0: ओम मैं मोह परम व्यवहार
1: सुख मान अपमान
0: अनेक प्रकार की योग ज्ञान
1: केला बरती जा
0: ये जो जदन नानक
1: अपन के लाभ कर देखे के संकोचे दो नानक के जय अभिगत भगत आप
0: जय बसरे पासार संत प्रताप
1: रूपा का पेतनी
0: उनकी शोभा उनो बनी
1: आपे कौत करे आनंद चोज
0: आपे रस भोग निर्जोग
1: जिस अपने नाय लावे

0: सामग्री जा का तना
1: आपन जसा भी सुना
0: आपन जाने खेल बनाया
1: आज्ञाकारी की निभाया
0: सबके मद लगत रहे
1: जो कुछ कहना जो आपे गए
0: आज्ञा आवे आज्ञा जाए
1: नानक जा पावे तले सुनाए
0: इस्ते होए सुनाई बुरा।

सन्नतं स्वागतरो नानगुरुपुरे नमस्कार सा संपत् परमानंद गुणगोविंद प्रियो रूप जागे रंग अनेक दुख भंजन पूरन गिरवाल नानक जी का ए आधार अमलीक लाल ए रतन आप तरे लोके निस्तार जागे मन लगा रंग सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजे नानक उतरे दिन के साथे कर कृपा प्रभु आप मिलाए अमृत नाम साथ संग लैन पूरन होई सेवक की सेव राम।

नारद जी से प्राप्त हुए, बुद्ध ज्ञान सर्वत्र सिद्ध, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान।

रहयो संत हो टोल साध बहु तेरे डिठे सन्यासी तपस्ये है मुखो ए पंडित मिठे बरस एक हो फिरियो किने नह पर चो लायो कहती ही कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दू जय लगे तिनके गुण हो क्या कहो गुरुदेव मिलायो पिखिया।

0: न जोगी जाने रुतमा हु न कोई,
1: जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई।
0: किव का राखा किव साला ही, क्यों वरनी किव जाना,
1: नानक आखन सबको आके एक तो एक सियाना।
0: साहिब वड्डी नाई कीता जा कहुवै।

0: किस रसल
1: प्रकार चलावे लिखे आवे भाग
0: आदेश से आदेश आ दलील अनाद अनाहल जुचवे कोवेस
1: एका माई जुक्त व्याई तिन चले परवान
0: एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान
1: जिव तिस पावे तिवे चलावे जिव होवे फुरमान
0: ओवे के उन्हा नदनावे पोताए मिलान
1: आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस
0: आसन लोए लोए पंडार जो किस पाए सोए कावार
1: कर विखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार
0: आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस
1: एक दूजी पौ लख होहे लख होवे लख वीस
0: अलग अलग गेड़ा आकिए एक नाम जगदीस
1: ए त्राहि पद पवड़िया चढ़िया हुए कीस
0: सुगल आकाश की कीता
1: नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस।

0: भुजंग पर्यात छंद नमो सर्व माने समस्ति निदाने
1: नमो देव देव अपेक्षी अपेवे
0: नमो काल काले नमो सर्व पाले
1: नमो सर्व कोणे नमो सर्व कोणे
0: अनंगी अनाथे नृसंगी परमाते
1: नमो काल पाने नमो मान माने
0: नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने
1: नमो गीति गीते नमो तान ताने
0: नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे
1: नमो पान पाने नमो बाद बादे
0: अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे
1: प्रभंगी परमाते समस्ति विभूते
0: कलंकन बिनाने कलंकी स्वरूपे
1: नमो राजा जयश्रंग प्रभुरूपे
0: नमो जोग जोगेश्वरंग परम सिद्धे
1: नमो राजा जयश्रंग परमे
0: नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे
1: नमो ब्रह्म ज्ञाता नमो लोक माता
0: अपेक्षीय परमीय भोगीय पुक्ते
1: नमो जोगेश्वरं परम युक्ते
0: नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे
1: नमो प्रेत प्रेत देवेश धर्मे
0: नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे
1: नमो शासाहन नमो पुपुपे
0: नमो दान दाने नमो मानु माने
1: नमो रोग रोगे नमः सनिसाने
0: नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं
1: नमो इष्ट नमो तंत्र तंत्रं
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी
1: अनुपे रूपे समस्त निवासी
0: सदा सिद्धा बुद्धा बृद कर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं
1: सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं
0: अच्छे दी अपे दी नामं कामं
1: समस्त पराजी समस्त स्थामं
0: तेरा जोर चाचरी छन जले हैं थले हैं बीत हैं बे हैं
1: प्रभु है अजू है देश है अपेश है
0: भुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे
1: नमो सर्वमाने समस्ति निदाने
0: नमस्तु निर्नाते नमस्तु परमाते
1: नमस्तु अगजे नमस्तु अपंजे
0: नमस्तु काले नमस्तु पाले
1: नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे
0: नमो राज राजे नमो साज साजे
1: नमो साहसाय नमो महामाये
0: नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते
1: नमो रोग रोगे नमो सुख सुखे
0: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे
1: नमो सर्व जीतन नमो सर्व पीतन
0: नमो सर्व ज्ञान नमो परम तान
1: नमो सर्व मंत्र नमो सर्व
0: चंद्र नमो सर्व दृशं नमो सर्व कृष्ण
1: नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे
0: नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे
1: अभिजे अभिजे समस्त पसीजे
0: कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी
1: सदा सर्वदा सिद्ध निवासी
0: चरपट चंद प्रसाद अनवृत कर्मे अनवृत धर्मे
1: अकल जोगे अचल भोगे
0: अचल राजे अटल साजे
1: अकल कर्मन अलग कर्मन
0: सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता
1: सर्वं पाने सर्वं माने
0: सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
1: सर्वं भुक्ता सर्वं युक्ता
0: सर्वं देवं सर्वं पेवं
1: सर्वं काले सर्वं पाले
0: रुवाल जन द्वय प्रसाद आद्रूप नाथ मूर्त जोन पुरख पार
1: सर्वमान त्रिमान देव पेवा दुदार
0: सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपुन काल
1: जल जल विराजे अभूत रूप प्रसाद
0: नाम धाम न जात जाकर रूप रंग न रेख
1: आद्रूप दार मूर्त जोन

0: भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता
1: चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने
0: चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती
1: चतर चक्र पाले चतर चक्र काले
0: चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे
1: चतर चक्र मानिए चतर चक्र दाने
0: चाचरी छंद न सतराय न मित्राय न परमंग न पितराय।

0: जदेसे के आबे जपेसे
1: के आगंज करमे की आ पंज परमे
0: के आबे जलोके के आदित सोके
1: के अवधूत बनने के बेभूत करमे
0: के राजंग प्रभा है के तरनंग तुझा है
1: के आशोक बनने के सर्वा बने
0: के नेत्र करती है के शंत्र क्षत्रिय है
1: के ब्राह्मण स्वरूप के अंत

0: सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
1: सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे
0: सर्वत्र सोखे के सर्वत्र पोखे
1: सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राणे
0: सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे
1: सर्वत्र मानिए सदैव प्रदानिए
0: सर्वत्र जाप्ये के सर्वत्र थाप्ये
1: सर्वत्र बाने के सर्वत्र माने
0: सर्वत्र इंद्रे के सर्वत्र चंद्रे
1: सर्वं कलीमे के परमं विहीमे
0: अकल अलामे के साहेब कलामे।

0: भगवत प्रभा है सजुगत सुधा है
1: दैवम स्वरूप है अपेदी अनूप है
0: समस्तों पराज है सदा सर्वसाधन

0: गंजे अगादे
1: सुवन सर्प आगे सुसर्प अनुरागे
0: दुर्गुप्त स्वरूप है चिजह अचूत है
1: लड़कन प्रणास है पृथ्वी और प्रवास है
0: प्रभा है सदैव सदा है
1: विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनुप है।

0: प्रकाश है कि मितो सुभाष है,
1: के अजब स्वरूप है क्या मितो विभूत है,
0: मितो पसा है कि आत्म प्रभा है,
1: के अचलन अनंग है क्या मितो अपंग है,
0: मधुपार चंद्र है प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदा,
1: हर बार अगज हर नर पर बंज
0: अंगद प्रणाम मुन मन सला,
1: हर नर अखंड पर नर अमंड
0: पवनास मुन मन प्रकाश,
1: गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम,
0: अंच जंग आसन अपंग
1: अपार गत मित उदार,
0: जल थल मंड दिस्विस पंड,
1: जल थल महंत दिस्विस बेअंत,
0: पवनास तेता तुरा
1: आजान बाहुवे के सदाओ,
0: कार आद कतनीय नाल
1: खल खंड ख्याल गुरबर अकाल,
0: कर प्रणाम चित चरण नाल
1: अंचिज गात अजिज न बात,
0: अंचिज गात अनरंज बार
1: अंटूट बन पंडार अंटट अपार,
0: अटीट तरम अटीट करम
1: अनबन अनंत दाता महंत,
0: बोल मना चंता प्रसाद करनाले हर काले,
1: खल खंडन है मैं मंडन है,
0: जितेश्वर है परमेश्वर है,
1: खल कारण है सर्व वारण है,
0: के तन है जग के कन है,
1: मन मान्य है जग जाने है,
0: सबंग पर है सबंग कर है,
1: सब पास्य है सर्व नास्य है,
0: ना करे वे संभर
1: है, जगतेश्वर है,
0: ब्रह्मंडस है कल खंडस है,
1: पढ़ते पर है।

0: नायक है कल का एक है,
1: संबर है करनाले
0: निर्णायक है सरपा एक है,
1: भंजन है गंजन है
0: वृत्तापन है जब जापन है, कर्ता कर है हरता हर है,
1: मातम है सर्वातम है,
0: आत्म बस है जस के जस है,
1: प्रिया चंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे
0: नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे
1: नमो अंधकारे नमो तेज तेज।

0: कचरी चंद अजय अल अब अब
1: अबू अजू अनास कास
0: बंज बंज लख पख
1: अकाल दयाल अलेख पेख
0: नाम अकाम अगाडा
1: अनाथे परमाथे अजो नियमोनी
0: नरागे नरंगे नरूपे नरेखे
1: अकर्मन अपर्मन अगंजे अलेखे
0: प्रिया चंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे
1: अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे
0: कामन विभूते समस्तल स्वरूपे
1: कर्मन प्रणासी सुदर्मन विभूते
0: सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी
1: करीमुल करिंदा समस्तुल निवासी
0: अजाय विभूते गजायब गनी में
1: हरियन करियन करीमुल रही में
0: चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते
1: स्वयंभव शुभम सर्वदा।

0: जे नर श्रीपत के प्रस है पग ते नर फिर न दे तरेंगे।
1: पियो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बग ध्यान लगायो।
0: नाच फ्री लिए सात समुद्र लोग पर लोक वायो।
1: पास के ओ बकियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे जो भैंस बितायो।
0: साच को सुन ले सब जिन प्रेम की ओ तिन ही प्रभ पायो।
1: काहुले पाहन पूज त्रियो सिर काउ लिंग गरे लटकायो।
0: काहुल वच दिशा में काऊ बचा को शीश निवायो।

0: सब जगत बनायो देव दै जचन पुजायो
1: आदंते के अवतारा सोई गुरु सुन जियो हमारा
0: नमस्कार तिसी को मारी सकल पुजा जन आप हमारी
1: शिवकन को शिव गुण सुख दियो सतरन को फल मोहत कियो
0: कट कट के अंतर की जानत पले ब्रे की पीर पहचान
1: चीटी ते कुंचर सुला सब के पादेश कर फूला
0: संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी
1: एक एक की पीर पहचाने कर कर के पट पट की जाने।

0: कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण सुमराता
1: सगल देखो आता दूसरों की उनको शकलता
0: श्री सुचो पे दयाला पूर्ण करो ग्रंथ काला
1: मन वाचे फल पावे सोई दुख नर से व्याप्त होए
0: अरिल सुने गुग जो आए सुरसना पावे सुने मूड चित लाए चितावे
1: रूप दर्द वो निकल न तिन नर के रहे जो जा की एक बार चोपे को कहे
0: चोपे संबत सत्रह सैस पनी जय अर्ध सैस उन्दी ने के
1: सिमर
0: शास्त्र वेद सब वो पेद कह हम एक ना जाने।

0: अमृत खोजते सो अमृत गुरते पाया,
1: पाया अमृत गुर कृपा किन्नी सच्चा मन वसाया।
0: जी जन सब तुद पाए वेक प्रसन्न आया,
1: लब लोग अहंकार

0: ना जाए सहसा कि ते संजम रहे करम कमाए।
1: सहसे जू मलिन है कि संजम तोता जाए।
0: मन तो सबदला को अर्जो रो चितलाए।
1: नानक गुर प्रसादी सहज उपजे ऐसा इब जाए।

0: पठाए श्री लाए सुनो सतबाणी सच अलख वडानी ताकि गत के ही न जाए
1: कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो।

0: ग्रंथ की बार महल पंजमा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय कै हो हरिया पाई
1: कर्म लिखन्ते पाई रुत सोहाई
0: मंत्रिण त्रिपवन मौल्या अमृत फल पाई।

0: तू मेरे बल है ता क्या मशंदा,
1: तू सब किस मेनू सौंपे आ जा तेरा बंदा,
0: लखमी तोड़ना वही खाए खर्च रहंदा,
1: लखसी मेदनी सब सेव करंदा,
0: ए बैरी मित्र सब की ध्यान है मंगे मंदा,
1: लेखा कोई न पूछे जा हर बक्संदा,
0: आनंद पे

0: सुन लीजिए।
1: और न मांगत हो तुम ते का चाहत हो चित में सोई कीजिए।
0: शासन सोवा तीरन पीतर जूझ मरो तो साज पति जय।
1: संत सहाय सदा जग माए
0: कृपा कर श्याम है भर दीजे। सैया दे शिवा वर मोहे है शुभ कर मन दे कबहु ना डरो।
1: ना डरो और सो जब जाए लरो निश्चय करे अपनी जीत करो। हर
0: सिखो अपने ही मन को ए लाल जाओ गुण तो उचरो।
1: जब आप ही ओद निदान बने अधीरन
0: में जब जूझ मरो। तन जियो ते को जग में मुक्ते हर चित में जुद विचार है।
1: नितना नित्रे जस नाव चढ़े पर सागर तारे।
0: काम बनाए तन बुद्ध स्यों दीपक ज्यों उजारे।

0: गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा
1: गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन गुरुदेव बंध यशोदरा
0: गुरुदेव दाता हर नाम उपदेशे गुरुदेव मंत्र सिर नरोदरा
1: गुरुदेव शांत सत बोध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा
0: गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मजन अपरंपरा
1: गुरुदेव कर्ता सपा भरता गुरुदेव पति पवित्र करा
0: गुरुदेव आज जुगा जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा।

सगल समग्री तुमरे सुतर तारी तुम ते होय तुमरी गात मित तुम ही बोलो जी वाहिगुरु एको ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिरंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नाउ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस रिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौने दे आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान करके बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ

चक्र चेहन अर बरन जात अर पात नहिन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कहन सकत के हे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहे साहन गणिज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बाण त्रेन कहत त्वय सर्वनाम कथय कवन